पानी झे चंदन मती निहराओ, तू बोझे धरती मती मिसमाओ, पानी झे चंदन मती निहराओ, तू बोझे धरती मती मिसमाओ, मदद